खुदा का किनिंग निन ना हो रही खुदा का कहीं नहीं भाई ऐसा लाते ना भैया खरा खोला नो ले कनी जे आउ तो हो रोजी नहीं था भाई ओ बगाई जो तो खुला था इशारे लो बगली ना उसी दिन भाई